0: are listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: Hello, I'm Sarah Warmby. Biosecurity experts say reporting sightings of sick or dead birds will be critical in the fight against H5 bird flu after a case was confirmed in a native bird for the first time. Jefferson Shaw explains.
3: Environmentalists say a greater crested tern testing positive for H5N1 influenza in South Australia marks a significant escalation in Australia's outbreak. It's a disease that's killed millions of wild birds, devastated colonies of penguins, seals and sea lions around the world. Invasive Species Council's Chief Executive Jack Goff is urging Australians to remain vigilant, particularly along the coast.
4: This is one where the public are the front line of the biosecurity response.
3: He's urging the federal government to establish a $200 million wildlife resilience fund to boost populations of susceptible species. Jefferson Shaw reporting.
2: The major Telstra outage that blocked more than 600 emergency calls was reportedly caused by an outdated server that reached its end of life nearly a decade ago. The timing device suffered a software glitch that accidentally rewound the network's internal clock back to 2006. Sources have told The Age the part in question would have only cost the telco $22,000 to replace. Economists are questioning One Nation's core cost of living policies. Independent claims suggest the package could cost the federal budget more than $90 billion. The party has promised an array of major tax breaks, including halving the fuel excise for 3 years and eliminating the GST on insurance. Meantime, economists say a slowly loosening labour market will hopefully lead to rate cuts, but not until next year. CommBank figures show wage growth remained steady last month, but is expected to pick up later this year. CBA economist Harry Ottley says if the jobs market softens, it may give the Reserve Bank wriggle room on cutting rates.
5: Because the labour market has been fairly tight for a long period of time now, and if we do continue to see this slow cooling of the labour market, it probably will help bring inflation down from elevated levels, and hopefully that means some rate cuts into next year.
2: Wildfires have killed at least 12 people in southern Spain. The BBC's Guy Hedgeco is in Madrid.
6: There are concerns that the death toll could increase potentially quite substantially further because there are still 19 people unaccounted for, we're told, by the authorities. Of those who've been confirmed to have died in the fire, four are believed to be British, people who were travelling in a British car and seem to have been trapped by the flames last night. And there are another seven who died when they were trying to escape the flames on foot.
2: A passenger is recovering after he was almost sucked out of a Ryanair flight after a window shattered mid-air while the plane was flying to Germany. The man was saved by his wife. She hung onto his legs after parts of an engine smashed into the window. And Cold Chisel's saxophone player Andy Bickers has died. He toured extensively with the band for over three decades. This is Air News. Another nail-biter in the AFL with Collingwood and North Melbourne battling it out at Docklands Stadium. Alan Baskin takes a look.
7: The two sides were neck and neck all the way through the game, Collingwood finally edging ahead late in the final quarter, winning 89-85. The Pies' Josh Dacos has told Fox Footy there is plenty to celebrate.
8: You know, North really brought in that last and went to the pump. They kicked a few early, but yeah, we never go down fighting. And yeah, I just thought the effort tonight was unbelievable. Four quarters, great game.
7: It's St Kilda against Port Adelaide in today's early game. Then the Giants host Geelong, followed by Carlton against the Hawks, while the Crows host the Suns. Alan Baskin, Air Sport.
2: In rugby league, the Warriors thrashed the Tigers 32-6. And Cam Waters has strengthened his 2026 Supercars Championship credentials as he fended off Brody Kostecki at the Townsville 500. Leonie Kay reports.
9: Waters Walters was able to beat Gostecki off the front row and managed his lead superbly, fending off a flying Dick Johnson Racing Mustang by just 0.2 seconds at the finish. Rounding out the podium was Matt Payne, who regained the championship lead for the first time since March, despite a strong recovery drive from 16th to 10th for Brock Feeney. Action resumes today with race 21 at 3:05 p.m. Australian Eastern Standard Time.
2: Australian Independent Radio News.
10: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. हम बात कर रहे हैं, हम हमेशा मिल के बात करते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के न्यूज़ के बारे में, हमारा यहाँ क्या चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में हम क्या कर रहे हैं. तो पहले तो थैंक यू, पिछली बार बहुत लोगों ने मुझे अपना न्यूज़ भेजा, अपना कमेंट्स भेजा, सो थैंक यू. और सजेशंस भी आ रहे हैं और सब लोग को अच्छा लगा कि हम पुराने हिंदी गाने बजा रहे थे, तो वो सजेशन की वजह से आज थोड़ा और वो गाने का सिलसिला शुरू जारी रहेगा, शुरू नहीं जारी रहेगा. और उसके अलावा मैं ये बात करना चाहती थी कि ये हफ्ते मोदी जी आए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में हम और क्या क्या कर रहे हैं. जैसे ये आम का मेला अभी ख़त्म नहीं हुआ है बहुत जगहों पे, और आम का मेला अभी भी है और एक आ रहा है ये हफ्ते में. तो गूगल कीजिए मैंगो मेला और आपको और बहुत सारे जहां इवेंट्स हो रहे हैं, ब्रिस्बेन में हो रहा है, सिडनी में हो रहा है और बहुत जगहों पर हो रहा है, लेकिन हम इसके बारे में और बात करेंगे. और इवेंट्स जो आपने मुझे बताए जो सिडनी में हो रहे हैं, हमारे हिल्स डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं और आसपास हो रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे. लेकिन पहले तो मैं एक मौका लेना चाहती हूँ आपसे एक बात करने के लिए. इसके बारे में हम लोग कंक्लूजन में भी एक बार बात करेंगे, लेकिन कबीर के दोहे तो सबने सुने होंगे और उसमें से एक दोहा जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है, एक्चुअली काफ़ी दोहे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन उसमें से जो पहला एक दोहा जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जो अपने बारे में है, सेल्फ ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है, जो है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई. मतलब बाहर हम ढूंढते रहें गलतियाँ, लेकिन एंड में जो गलती मिली या जो कमी मिली वो हम में मिली. तो ये एक थॉट है जो बहुत डीप थॉट है और ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. स्कूल की किताब में पढ़ा था ये मैंने कौन सी, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो ये बात एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए. तो इसके हिसाब से आप प्लीज़ इसका ध्यान रखें, इसको याद रखें. एंड में वापस हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फ्लू सीज़न की. टीकाकरण खसरे, काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करते हैं. अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चे समय अनुसार सभी टीके लगा चुके हैं. ये हेल्थ NSW का एक अपडेट है और हम पहले गाने का सिलसिला शुरू करते हैं और उसके बाद और 90.5.

0: listening to the sound of Alive 90.5.
1: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family. Station sponsor.
2: नमस्ते और आपका स्वागत है हमारे इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अच्छा अभी ये मैंने जैसे कहा था इन मैंगो मेला, बहुत सारे मैंगो मेला चल रहे हैं. मैंने इनफैक्ट बहुत सारे ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे के मैंगो मेला का ऐड आया हुआ है. एक तो हो रहा है फेयरफील्ड में, एक आई थिंक हो चुका है ये पिछले हफ्ते हुआ था, बट बहुत सारे आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपके एरिया में क्या चल रहा है ये आपको पता चलेगा. इसके अलावा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो है अवतार फॉर्म ऑफ विष्णु, जो है आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एक एग्जिबिशन चल रहा है जो शुरू हुआ था 20 जून से और चलने वाला है 5 अक्टूबर तक. अच्छा और ये इसमें विष्णु के अलग अलग अवतार के डिस्क्रिप्शंस हैं, एग्जिबिट्स हैं और आप जाके देख सकते हैं. पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, टेक्सटाइल्स, स्टोरीज, जो कहानियाँ संस्कृत में हैं उनके जो अवतार का मतलब क्या है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन. तो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए थे और उनके उनको हम लोग वो कहानियों का सिलसिला मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया है जैसे हम पहले होता था. जो नाना नानी दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते थे विष्णु के, महाभारत के, रामायण के, वो थोड़ा कम हो गया है. तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक एग्जिबिशन है जहाँ हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं. मैं जा रही हूँ शायद होपफुली अगले हफ्ते अपनी बेटी के साथ देखने की और कहानियाँ सुनाने. और अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं स्कूल की, तो उसके हिसाब से आप वो भी देख सकते हैं. एक और छुट्टियों के लिए मैंने देखा, आई थिंक कल हुआ था, एक गेम्स, बोर्ड गेम्स के लिए कैफ़े में जो अहिल शो ग्राउंड में है वहाँ उन लोगों ने गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए थे बच्चों के लिए. वहीं कैफ़े में मैंने देखा कि एक करियोके नाइट हो रहा है बच्चों के लिए जो कल हो रहा है आफ्टरनून में, तो आप जाके देख सकते हैं. और एक और चीज़ मुझे बताना था, जो एक म्यूज़िक प्रोग्राम आ रहा है अंकुर श्रीवास्तव जी का 11 जुलाई आज हो रहा है, शाम को है. देखिए कि अगर आप ले सकते हैं, ये एक चैरिटेबल कॉज के लिए हो रहा है, सुर और एहसास. आप अगर अपने बच्चों या अपने फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़िकल नाइट हो सकता है. तो ये थोड़े बहुत जो मुझे लोग बताते हैं उसके हिसाब से मैंने अनाउंस किया है. और कोई अगर आप जानते हैं जो मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है और आप उसमें में से इस प्रोग्राम में उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं. और आगे बढ़ने से पहले, आगे गानों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले, हेल्थ NSW का एक और समाचार. क्या आपकी आयु 65 साल यानी 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों के गंभीर रोगों से अपने और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं. आपके लिए कौन सा टीका सही है इसके बारे में अपने GP या फार्मासिस्ट से बात करें. तो इसी मैसेज के साथ आप सुने अगला गाना. पुराने गानों का सिलसिला अभी भी जारी है.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में। अच्छा, अभी मैंने पहले अपने इसमें मेंशन किया था जो ये हफ्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो था मोदी जी का विजिट, है ना। बहुत लोग, करीब करीब 30-35 हज़ार लोग मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में जमा हुए 9 तारीख को, और ये आए थे इनका एनुअल लीडरशिप समिट अटेंड करने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी जी के साथ। और ये समिट मेलबर्न में हुआ था। उसके बाद इन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो नए एग्रीमेंट्स साइन हुए और डिस्कशंस हुई, जिसमें डिफेंस, ट्रेड, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हर चीज़ में इनिशिएटिव्स, नई चीज़ें इन्होंने साइन किया है, नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं और नए इनिशिएटिव साइन हुए हैं। उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीईओ फोरम है उनको वहाँ भी एड्रेस किया था, जहाँ ये हाईलाइट कर रहे थे कि जो इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का योगदान क्या है, और इंडिया में जो इंडियंस जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, हमारा योगदान क्या है। इतने लोग एक साथ, एक सेलिब्रिटी मोदी जी को जैसा स्वागत मिला वो शायद ही कहीं, शायद ही दूसरे लोगों को मिलता है। मोदी जी की तरफ लोगों का प्यार और जो ये भावना दिखाते हैं इसके बारे में, वो बहुत ही बहुत दिल को छू जाता है। और मोदी जी ने एक बहुत बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान, ये इवेंट के दौरान उन्होंने कहा जो सबका दिल छू गया, वो था, उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपना प्यार और अपना जो थैंक यू की जो भावना है वो उन्होंने प्रतीत किया। और उन्होंने कहा कि एल्बनीजी जी को थैंक यू बोला और कहा कि सब लोग जो ऑडियंस में हैं उन्होंने अपना फ्लैशलाइट ऑन करें, जो एक ट्रिब्यूट है एंथनी एल्बनीजी जी के लिए। और ये जब पूरा स्टेडियम सबके फ्लैशलाइट से जग गया, तभी एंथनी एल्बनीजी जी जो बहुत भावुक हुए। तो ये बहुत ही प्यारा जेस्चर लगा मुझे मोदी जी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को थैंक करते हुए। तो एंड द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आई एम रियली ग्लैड दैट हम यहाँ रहते हैं, हमें ये जो ब्यूटीफुल जगह में रहने का एक मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। तो थैंक यू मेरी तरफ से भी, मैं होती तो मेरा भी फ्लैश लाइट ऑन होता। और लास्ट मैसेज हेल्थ NSW की तरफ से, आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सुरक्षित रख सकता है, आपके GP या फार्मासिस्ट से बात करें। healthdirect.gov.au/NSW फ्लू वैक्सीन पर जाएं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए।
1: Alive 90.5. Transform your home with Heartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalized customer care. Heartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com. Station sponsor.

0: Alive 90.5.
1: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. मोदी जी के विजिट के और दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ. जो पहली बात ये है, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे तमिलनाडु का एक आइडल विंग है CID, जो जिन्होंने इंडिया से जो आर्टिफैक्ट्स जैसे मूर्तियां हैं, जो इंडिया इंडियन रिलेटेड हिस्ट्री की चीज़ें हैं जो इंडिया से गायब हो गई हैं, उसका एक आर्काइव्स बना के बहुत कंट्रीज़ को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई ये हमारा आप हमारे आपके कंट्री में है अभी, अगर हमें वापस दें तो अच्छा होगा. तो ये जो एनुअल समिट इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट के दौरान एंथनी एल्बनीजी जी ने 3 इंडिया के एंशियंट जो मंदिर के मूर्तियां हैं वो वापस दिए इंडिया को, और इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशन एंसेस्टर्स के जो रिमेन्स हैं वो जो गवर्नमेंट म्यूजियम में हैं चेन्नई में वो वापस दिए ऑस्ट्रेलिया को. तो जो वापस आए हैं 900 साल पुराना एक एक कार्तिकेय की मूर्त जो नागनाथन स्वामी टेंपल तंजावुर से है, एक नंदी जो एक नंदी और एक त्रिशूल जो भद्रकाली गॉडेस भद्रकाली फ्रॉम काशी विश्वनाथ स्वामी टेंपल तमिलनाडु का है, ये 3 चीज़ जो हमें वापस मिले हैं. ये एक अच्छा गुड फ्रेंडशिप जेस्चर कहलाया जाता है कि जिसकी वजह से ये रिटर्न किया गया. और दूसरा ये है कि एक क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ अनाउंस हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग BBL इंडिया में होने वाला है पहली बार चेन्नई में चेपक स्टेडियम में 2026-27 का जो सीज़न है वो वहाँ होने वाला है. एम ए चिदम्बरम स्टेडियम था पहले, वहाँ अनाउंस हुआ है दिसंबर के लिए. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच माना जाता है मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में, और ये आ रहा है चेन्नई में, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़. और जैसे मैंने पहले ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट नेशंस का मेंशन किया था, जो इंडिया के रिमेन्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उससे याद आया कि नैडॉक वीक चल रहा है. सिटी में बहुत सारे अपने फ्लैग्स देखे होंगे. आज पैरामाटा में एक इवेंट था जहां हमारा अलाइव 90.5 का एक वैन भी गया हुआ था वहां लोगों से बात करने के लिए. अगर आप पैरामाटा में हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से 3 बजे तक चल रहा है इवेंट, जा सकते हैं. ये पूरा हफ्ता है नैडॉक वीक के लिए, जाके पता करें ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के बारे में और यहाँ के एबोरिजिनल कल्चर के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो गाने का सिलसिला अभी भी शुरू है, तो सुनते रहें.

0: Looking to stay connected with the Hillshire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
1: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
2: Station sponsor.
3: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. अभी मैंने पहले जब शुरू किया था शो तब मैंने कहा था कि हम बात करेंगे हमारे इंडियन भाई बंधु के बारे में जो मैंने पिछली बार भी बात किया था इनके बारे में जो और मैंने ओपिनियन मांगा था लोगों से और बहुत सारे रिप्लाइज आए. बहुत लोगों ने कहा कि वो करते हैं तो हम करते हैं तो क्यों गलत हो गया. देखिए मेरा ये ओपिनियन है और बड़े मैं मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन जितना देखा है जितना सीखा है उसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि जो सिविक सेंस जो नागरिक भावना है वो अंदर से आती है. अवेयरनेस हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर जैसे बच्चों को आप जज करते हैं कि अब माता पिता ने आपको क्या सिखाया यही सिखाया आपने यही बात हो जाती है. हम बाहर जाके ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्किन का कलर है वो हमारे साथ ही चलता है वो फिर आ जाता है हमारे नाम पे. गलत चीज़ गलत होती है स्किन का कलर जो भी हो. तो एक सबके साथ प्यार से एक हारमोनियस जैसे पारसी एक कहानी थी इंडिया में पारसियों ने कहा था कि हम इंडिया में आएंगे तो हमें ऐसे समझो कि दूध में जैसे शक्कर घुल गया हो हम वैसे रहेंगे प्यार के साथ मिठास फैलाते हुए. हम मिठास तो फैलाते हैं हमारा गाना हमारा कल्चर हमारे लोगों के साथ लेकिन ये मिठास अगर बहुत मिठास अगर हम गलत करने लगें और अगर हम हमारे देश को गलत रिप्रेजेंट करने लगें तो इसका असर जो बुली करता है उन पे नहीं पड़ता है जो सहता है उन पे पड़ता है. और सारे लोग हम जनरली सहने वाले लोग में से हैं. ज़रूरी नहीं है सहना बुरी चीज़ सहना सच्ची बात अच्छी बात नहीं है लेकिन थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचें. ये मेरा टू सेंट्स है.
4: Alive 90.5 broadcasting to the hills, Parramatta and Cumberland.

नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट और मेरा वीना शशि कुमार के साथ. अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है. थैंक यू आज का गाना, आज का कार्यक्रम सुनने के लिए. और किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये मेरा एक फेवरेट गाना है हसरत जयपुरी जी का. लेकिन इसमें जो कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, और इसमें हमारे भाई बहन जो इंडियन भाई बहन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या कहीं से भी सुन रहे हैं, आपके लिए मेरा यही दुआ है कि आप हंसते गाते गुजरते रहें और आपका दिन हमेशा अच्छा बीते. लेकिन याद रहें कि हम एक कल्चरल एम्बेसडर हैं हमारे कंट्री के, जहां भी जाएं तो वो ज़रूर याद रखें और उसके हिसाब से करें. जैसे मैंने पहले कहा था कबीर का दोहा, बुरा देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो ढूंढा अंदर वहीं हमें बुराई मिलती है. तो आप ये वो याद रखें कि पहले दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप पे एक बार देख लें. और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या फिर मैं ये जो चल रहा है इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, इन जनरल ये एक बहुत अच्छा सुझाव है ज़िंदगी के लिए. तो और दो गाने मैंने इसके बाद लगाए हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी विदा लेती हूँ. अगले हफ्ते मिलेंगे नए इवेंट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ. उसके पहले अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करें, मुझसे कुछ बताना चाहें मुझे, तो ज़रूर मुझे ईमेल करें veena.sashikumar@alive905fm.com.au पे, या फिर अलाइव के जो वेबसाइट पे आप हमें रीच कर सकते हैं. हमारा नंबर भी वहाँ होगा जो है 04050509055. थैंक यू, नमस्ते एंड हैप्पी सैटरडे एंड हैप्पी संडे.